म हरिप्रसाद मैनाली पत्नी सिलौती र पुत्र गुमिल माली कहाँसी मुख प्रेमी मित्र र दाजुभाइ सजिला माता पिता सन्मुख नारायण।

0: एक बात बोले श्री कालिका माई भगवती की
1: जय,
0: भक्तर भगवान की
1: जय,
0: भक्त वत्सल भगवान की
1: जय,
0: सारा भक्त प्राणी की
1: जय।
2: निन्ना छैन नाङ्गाको याद छैन भोकको, निन्ना छैन नाङ्गाको याद छैन भोकको, इच्छा मलाई लागेर छ स्वर्ग लोकको।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

कथा प्रवचन श्रवण गरी तन मन र धनको पुण्य कमाउने सुवर्ण अवसर नगुमाउनुहोस्। कथा आरम्भ मिति विक्रम सम्वत 2083 साल अश्विन 25 गते आइतबार। सम्पन्न हुने मिति विक्रम सम्वत 2083 साल कार्तिक 2 गते सोमबार। समय दैनिक बिहान 7 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म। स्थान नेपाल मानव धर्म सेवा समिति उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती। थप जानकारी तथा कलश दान व्यवस्थापनका लागि सम्पर्क 98512547779, 98549924/09, 98449994/13, 98146999945, 98446056550। आयोजक नेपाल मानव धर्म सेवा समिति जिल्ला शाखा आश्रम दोलखा उपशाखा आश्रम सुन्द्रावती।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: TBS 하이너 सम्बन्ध
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: सिंगटी, हेलीपैड चौर बिगु गांव पालिका चार सिंगटी दोलाखा, लिंगवा सोयसांग घ्यांगघर डांडा बिगु गांव पालिका चार घ्यांगघर डांडा दोलाखा, गौरी शंकर नाजिंग गौरी शंकर गांव पालिका सात नाजिंग दोलाखा, थामी चांगु सेवा केन्द्र को कार्यालय बिगु गांव पालिका आठ थामी चांगु दोलाखा, मागा पौवा कृषि उप संकलन केन्द्र सैलुंग तीन बाखुड़ दोलाखा, काटाकुटी वीरेन्द्र माध्यमिक विद्यालय सैलुंग पांच काटाकुटी दोलाखा, फस्कु सेवा केन्द्र को कार्यालय सैलुंग छ गोठपानी दोलाखा, फस्कु साउते माध्यमिक विद्यालय कालापानी सैलुंग छ कालापानी दोलाखा, नामदु सेवा केन्द्र को कार्यालय बैतेश्वर छ नामदु दोलाखा, मार्बु वडा नम्बर सात को कार्यालय बैतेश्वर सात मार्बु दोलाखा, मैना पोखरी सेवा केन्द्र को कार्यालय बैतेश्वर पांच मैना पोखरी दोलाखा, मेलुंग र तामकोशी गाउँपालिका डुडे बजार तामकोशी गाउँपालिका तीन डुडे बजार दोलाखा, लिसंखु पाखर सेवा केन्द्र को कार्यालय लिसंखु पाखर गाउँपालिका पांच मुडे सिन्धुपाल्चोक।
1: मिति 2083 साल असोज 4 गते आइतबार, एकाई नम्बर दुई क्षेत्र भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर एक, कार्यक्रम स्थल मसन डाँडा, ठेगाना भीमेश्वर नगरपालिका एक छेमावती दुलखा, भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर दुई, भीम माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर दुई दुलखा, भीमेश्वर नगरपालिका तीन र छ, काडिङचोक माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका तीन चरीकोट दुलखा, भीमेश्वर नगरपालिका चार सर्व माध्यमिक विद्यालय टहले मन्दिर, भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर चार टहले दुलखा, भीमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर पाँच महेन्द्र द्वे माध्यमिक विद्यालय, भीमेश्वर नगरपालिका पाँच माटी दुलखा, भीमेश्वर नगरपालिका पाँच नयाँ पुल बजार, भीमेश्वर नगरपालिका पाँच नयाँ पुल बजार दुलखा, भीमेश्वर नगरपालिका पाँच बुढा भीमसेन माध्यमिक विद्यालय, भीमेश्वर नगरपालिका पाँच किराती साप दुलखा, भीमेश्वर नगरपालिका सात कुटीडाँडा माध्यमिक विद्यालय, भीमेश्वर नगरपालिका सात मकैबारी दुलखा, भीमेश्वर नगरपालिका सात कुप्री प्राथमिक विद्यालय, भीमेश्वर नगरपालिका सात कुप्री दुलखा, भीमेश्वर नगरपालिका आठ र नौ देवी माध्यमिक विद्यालय, भीमेश्वर नगरपालिका आठ बोस दुलखा।
0: मिति 2083 साल असोज 10 गते शनिबार, इकाई नम्बर तीन क्षेत्र काठमाडौँ, कार्यक्रम स्थल न्यू त्रिशक्ति पार्टी प्यालेस, ठेगाना काठमाडौँ महानगरपालिका 32 पेप्सिकोला काठमाडौँ, 2083 साल असोज 13 गते मंगलबार, क्षेत्र मुख्य निर्णय प्रमाणित, कार्यक्रम स्थल संस्थाको मुख्य कार्यालय, ठेगाना भीमेश्वर नगरपालिका छ चरीकोट दोलाखा। पुनश्च केही दुविधा भएमा संस्थाको फोन नम्बर 0949241397, 0949241943, 0949241549, 0949241303 फोन गरी जानकारी लिन सक्नुहुनेछ।
1: ठाकुर प्रसाद पाठक सचिव मिलीजुली कालिङचोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड चरीकोट दोलखा।
2: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: पत्रिकाहरू पढ्छन्।
1: ए उसो भए यी धामहरूको चाहिँ दर्शन गर्ने मेरो जीवनको ठूलो अभिलाषा थियो नानी, बरु कहिले र कसरी जाने हो सबै कुरा जानकारी पाउन त।
0: हजुर हुन्छ बा, सुन्नुहोस् है त।
2: दक्षिण भारतका प्रसिद्ध 11 ज्योतिर्लिङ तथा तीन धाम यात्रा हुँदैछ। प्रमुख दर्शनीय स्थलहरू नेपालतर्फ जनकपुर धाम, लुम्बिनी कपिलवस्तु, सेजी सातसो धाम नवलपरासी, देवघाट धाम चितवन, पशुपतिनाथ काठमाडौँ। भारततर्फ हरिहर क्षेत्र तर्पण पटना, मातृ मोक्ष पिण्डदान, पुनः पुनः मा श्रद्धा स्थल गयाजी, विष्णुपद दर्शन, बैतरणी नदी स्नान तर्पण, वैद्यनाथ धाम शिव सागर पञ्च स्नान, गंगा सागर तथा कपिल मुनि र कलकत्ता दक्षिणेश्वरी काली दर्शन, जगन्नाथपुरी साक्षी गोपाल दर्शन सागर स्नान, मल्लिका अर्जुन श्री शैलम तिरुपति बालाजी, श्री रंगम कावेरी रामेश्वरम दर्शन, बाइसकुण्ड स्नान, कन्याकुमारी लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मन्दिर दर्शन, भीमा शंकर त्रिअम्बकेश्वर श्रीडी साई बाबा ग्रीष्मेश्वर दर्शन, नर्मदा नदी स्नान, ओमकारेश्वर ममलेश्वर उज्जैन महाकालेश्वर दर्शन, चोटिला चामुण्डा भगवती द्वारिका पुरी द्वारिकाधीश दर्शन, गोमती गंगा स्नान तथा पिण्डदान, नागेश्वर गोपी तलाउ भेट द्वारका, बिन्दु सरोवर, मातृ गया पिण्डदान, पुष्कर क्षेत्र ब्रह्म मन्दिर।

0: नमस्कार
1: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम बैंडमा थपलो 7 मेगाहर्जबाट म बद्री प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 सन् आश्विन कृष्ण पितृपक्ष सन् 2026 सेप्टेम्बर 27 तारिक आश्विन 11 गते आइतबार परेवा तिथि परेवा श्राद्ध पनि हो आज
0: अब स्तुति गरौं
1: आयु द्रोण कुमार कैसरी हो साक्षेण कल्पय भरी।

जय श्री सच्चिदानंद गुरु महाराज को जय। जय श्री शांत भाई जी लगाए थी महात्मा जी को जय। हरिओम तक्षोम।

पर्यो कृष्णजीले अर्जुनलाई वहाँ आत्मज्ञान दिनुभयो कुरुक्षेत्रमा आत्मज्ञान दिनुभयो कुरुक्षेत्रमा आत्मज्ञान दिनुभयो कुरुक्षेत्रमा।